0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर

0: प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट, हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
3: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
4: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: आरंभ करछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। ବନ୍ଦନର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ରଚନା।

स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्रा काले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि।

0: ଆଚ୍ଛା ଦାସବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା 1970 ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍? ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କେମିତି ଅଛି?
1: ଆରେ ଏଇଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ
2: ଶକ୍ତି ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଢି ପାଇ ରହିଥାଏ। ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ସୁପର ଗ୍ରେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, 64 ବର୍ଷର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଦୁଆ। ଚେଟିନାଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ, ଦ ପରଫେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଚଏସ।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल करी देला। ए पर्यंत होटल रूम उपरे जीएसटी रो चारोटी दर लागुची। 1000 टंकारु कम दर युक्त होटल रूम उपरे 0% जीएसटी अछि। जेतेबेले कि 1000 टंकारु 2499 टंका मध्यरे थिबा होटल रूम उपरे 12% जीएसटी लागुथिला एवं 2500 रु 7499 टंकार होटल रूम उपरे 18% टैक्स लागुची। आउ एहाठारु अधिक दामरो होटल रूम उपरे 28% जीएसटी लागुथिला, किंतु एबेठारु होटल रूम उपरे केवल 2टी दर लागू हेबो। 7500 रु कम दामरो रूम हेले 5%। आउ अधिक दाम थिले
2: आकाशवाणी कटक समय सकाळ 8:00 परवर्ती कार्यक्रम दिल्ली रु।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।

0: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है।

0: कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार की विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक

0: Leadership Initiative Bharat Innovates 2026 जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. भारत इनोवेट्स 2026 भारत में निर्मित विश्व के लिए तैयार.
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है. जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे. पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत. लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही. नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी. दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश. नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण. पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त. गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया. सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे. पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी. देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े.
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे. दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे. इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है. मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे. और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister.

0: बैंक रु आवश्यक अनुजाई स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजिली मिलिबो जेउथिरे 4 लाख टंका पर्यंत नो कोलैटरल
1: आ सीए कोठी
0: मिठा
2: आरबीआई कहे
3: कर सटीक आरंभ हुआ फाइनेंशियली स्मार्ट आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर को घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे फॉर्म गुडी को voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि परिबे फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहा को बीएलएमको निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु अधिक सूचना पाई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आप रे बुके कॉल विथ बीएलओ सुविधा रो उपयोग करंतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी
4: किछि कथा किछि प्रथा किछि अनुरोध किछि अभिजोग आउ किछि प्रीति को नै आपनकर सुंदर चिट्ठी
5: चिट्ठी रे अछि किछि शुभेच्छा रो वार्ता किछि अभिनंदन रो कथा
4: आपनकर गुटी गुटी चिट्ठी आम हाथ रे
5: आपन हेउछंती
6: डाको बाला दे जा चिट्ठी डाको बाला दे जा चिट्ठी
4: आपण हेउछंती प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु कुमार नायक उत्तंगरा रामबाग जाजपुर
7: नरेन्द्र महाकोट बासुदेवपुर भद्रक
4: दिव्यलोचन भारीमल मोटा चंकिया खोर्धारु
8: बुलु पट्टनायक घसीपुरा आनंदपुर केन्दुझररु
4: दीपंकर पंडा शुभंकर पंडा दिव्यंकर पंडा राजश्री कर निराकर पंडा महाजन साहि पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ारु
8: बाबाजी चरण नायक तांको परिवार वर्ग भाई ओ भाई बहु पुओ ओ बहु नाती नातुणी माने ममादुला धामनगर भद्रक
4: परिडा मनोरमा सामंतराय लोपामुद्रा परिडा संजय कुमार परिडा रघुनाथपुर रंकाला आरके पटना केन्द्रापड़
8: टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप अनिल शर्मा कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज साहिल सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से
4: जयश्री पटनायक मधुसूदन नगर चटनी खुर्धारु
8: रमेश चंद्र बेहरा आयतपुर कटकरु
4: कमलाकांत बेहरा जयपुर झुंपुरा केन्दुझररु
8: संयुक्ता दास गोपबंधु समवाय नगर एलआईजी 26 जगतपुर कटकरु
4: इंदुमती बारिक श्यामपुर धामनगर भद्रकरु
8: अविनाश दास अंतरगड़ा श्री बलदेव जी केन्द्रापड़ारु
4: गोविंद बेहरा डांगुभाल केन्द्रापड़ारु
8: अरुकिता दास एवं आयशा प्रियदर्शनी कुजंग जगतसिंहपुरु
4: देशदीप इच्छापुर श्री बलदेव जी केन्द्रापड़ारु
8: स्वर्णलता साहू बालिया डेराबेस केन्द्रापड़ारु
4: नरेन्द्र कुमार साहू सुकांति साहू सोनाली साहू सौम्यरंजन साहू अरखपटना आठगड़ कटकरु
8: सूर्यमणि नाथ जयंती नाथ हाथीपारी सुकिंदा जाजपुरु
4: रामचंद्र साहू बड़मंगलपुर धर्मशाला जाजपुरु
8: एवं घासीराम प्रधान एक्स आर्मी देवदत्त प्रधान और सुचित्रा साहू गुली हिंदोल ढेंकानाळरु मतामत भरा सुंदर सुंदर चिट्ठी पई आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद।

0: ए गुबरा,
1: गुलाम मुंस
0: गुबरा पलाचे के आड़े सुन कैंटी की जाए तीनो
1: कैंटी की नहीं तो
0: नहीं जानू तू ये बमरा के हुई तो के मारी देमी को कैंटी की जाए तीनो
1: मोर की दोष ला से चंपी पठला बाबू टिके यार मुई को नहीं तर पिलारे कुसा से हबो
0: आसबो से साला
1: नहीं आसे से कोला तर कोचरी कहां के
0: और की कोला
1: ने से पिलारे कुसा लगी दा 21 टका दे छे गणी करी ने
0: साला ठीक से टका एक ताकार ताकत दिखाए ठीक ही नहीं जाने भमरा धुरी राजा ये धुरी के सुना करते जाने और तू ही बदमाश ले ले चंपी ले तो पिलार बाप दे छे 21 टका तो तो मिठान 21 जामना 21 जामना
2: ले ले टका ले बुजुर्ग आए चंपीर किसी दोस्त नाई सब दोस्तों तू ही ताके बाउंसरा नहीं करी छू ताके ले खेल दिखा छू तोरी लगी से बाबू कसरी गांव के गला और
0: चुप तू ही कथा नहीं कहो तो मुई चंपी के दोस्त नहीं दिया है ये साला बाबू 21 टका पठे यार सब दोस्त के जांग बोगली भावला ते नहीं जिने ये भमरा के से ताके खत्म कर दी पारे
2: तू ही ताके मार हान काट की जाकर मुई नहीं बंचे तोर लगी चंपीर लगी अरे तू ही बाप है चंपीर जीवन के बर्बाद कर दे लू
0: चंपीर माँ
3: बाबा माँ मुई तुमके जले छे मुई चली जीबी
0: की हैला तोर की हैला तू ही बोर चंपी तू ही खाली देख तो से शाला के मुई की करू छे
2: ए गोबरा तू ही केने एठी बसछु रे
1: आर मुई की करमी
2: तू जा तो जा चंपी सही तोटा के जाई छे ताको डाकमु घर को आसम अरे से तो बाबूर नगी पागल हो छे आर से बदमाश बाबू ताके नाही पचारे तार नगी मुई मरमी आर की तू जा जा जा
1: ए मां तुम्हें एंता को था कने कूचो
2: अरे तू तो तार मन नाही ले परिलु से गुटे बिहा शादी नुकर साथे रहिला तू ही ना मरत जा जा जा मोर मुहे के जा आसु छे सुनी तू रही परिबुनी जा
1: तू जा कोन मम्मी और की करबी तोर मन के तो मुई नाही लिए से कह बागुटे को थार कर बागुटे मुई तक नगी
2: अरे तू ही मके किछ कह नहीं कह तो जा जा तू मुई टिके शांति ते रहमी जा
1: जाउचे को जाउचे
4: यही सापर पेड़ी आ भितरे अछि सापर राजा सुन रे सापर राजा मुई जन्मर नाश नहीं सही पारे रे नहीं सही पारे चंपिलो तोर लगी मुई ए पुरान के छाड़ी गोनी मुई कोई थी नी तोर नगी और तोर बाबार नगी मुई यार नहीं बंचे नहीं बंचे

0: अरे चौपीर मा, अरे तू ही केने बाहर सुई छे का तो? ए चंपीर मा, हे अरे देख तो सांपोरी पेड़ी खुला पड़ी छे, सांप के नाड़े गोला। ए चंपीर मा, अरे गुबरा गुबरा,
1: अये
0: चंपी चंपी,
2: क्या हला बाबा?
1: क्या हला बाबू जी?
0: तोर मा, तोर मार जीवन ने नाई लो चंपी, कोई थिला मुर्मो मोला, से साला सांप तोर माँ के कटला, ताके मुई नहीं छड़े, जेते सांप इलाका ते आछे, सबके मुई मरमी, गुबरा, तू देख तो, गोदा और जार मोहरा लागा, चंपीर माँ बाँचे की ना मुई देखे, से साला सांप गोला के नारे, मुई ताके देखे,
2: माँ माँ मोर लगी ते मालू मुझे नहीं बचे
1: नहीं लो चंपी तोर मार नहीं बचे लो चंपी नहीं बचे
2: से की पांच बार नगी मोरी चे के गुबरा से मोरी चे तर जीत के रोक बार नगी
1: बाबूजी
0: देख तो गुबरा देख ये साला सांप के मुई धोरी चे ऐ मोर चंपी माँ के काटे ताके मुई नहीं छाड़े ताके मुई नहीं छाड़े
1: बाबूजी
0: नहीं छाड़े
2: मामा।

0: चाचा और मुझ धूलेर बेटी कहो बाबा कहो केने दे बाबू के मारबू मुई मना कली मोर को त नहीं मारले केने बाबा मोर
1: ओर लागी तोर मन लागी आर मुई नहीं बाचे मुई नहीं बाचे तोर कपाल तोर पिलार कपाल।

0: औषध जमा खाइबिनि जमा खाइबिनि खुड़ी हे चंपी आसलेनि मु कोन करबि
1: ओहो तू व्यस्त हो ना मा आलो मु परा तो पछरे अछि हां गई व्यस्त हो छ चुप हेकरी बास बा
2: चंपी ए चंपी
3: तू इके चिंते पालु बाबू तू जे बड़नो मन नहीं जानी छु हेले दे जानिनो
2: हां चंपी कहि जा तू गला पर मोर चाकरी गला मो स्त्री पागली हला मो जीवन टा नरक हे गला
3: मोर नागे तुमर भारी जा पागली
2: हां आम कथा गांव रे प्रकट हला परे तो पाखरे मु जति की दोषी ता पाखरे भी सति की दोषी से आज जे मां हि परलानी हौ जते बळे जानिला
3: कहना बाबू तू कहलु तो नागे मोय उजानी देमी मोर मान कर तो नागे मोय मां के हराली तोर सामने रे मोर बाबा के मार ली गां के छाड़ ली केला खरर छी मुई चाही थी ने आउ कार सते रोई जाई थी ती आज तु ही कह बाबू मुई की कर ले तोर भारी चत के फल बसबो सुख पाइबो मुई कर्मी
2: जोठी गंडा गंडा डाक्टर पारु नांती सब औषध केमी तू कोन करि पारि बुल चंपी
3: तु ही जा तो बाबू तोर भारी चके डाक नहीं तो तोर साई लोके कहबे मुई फेर तो के पाले पकौचे जा बाबू जा
2: हाँ डाकि आणुची तक
4: एले चंपी ई बु की पई कंदू रे तू देख तो राजा बेटा खुजू छे
3: आ तो राजा मुई यार कांदी बिनी तो नागी हसमी
5: देखला मां काका कांद चिल्लाउ छंदी राजा राजा बड़ो ही गलानी माप साली गोटी कह रहा
4: हॉस हॉस हॉस तू हॉस अरे तो राजा बेटा भी हॉस मैं तो काम को छटे यार की
2: तो मैं आसो तो आसो
3: कोड़ जी भी कोड़ नोच मते
2: ओहो रखो से कमो आसो
3: अच्छा कोई लो मु तो संजोबती दाउ थी ली कहीं की मते तमे ठाकुर घरु ऐठी की भिड़िया नीलो सुने
6: जुहार को सांता निमा
3: किए चंपी कुआड़े आसिलु शुणे हाँ हाँ एक घरे तोर पूरा अधिकार अच्छी हाउ मुझे तो चली जाऊँ मु कौन के भी सौतुणी सांगरे एकाठी रही पारि
6: तु कि कहुचे मुई ना ही बुझेलो सांतानी मा
3: मु संसार तो उचाड़ी देलु आउ कौन नबा को आसीचु कौन मते मारी ए घरे रहिबु तमे पर सापो खेड़ाओ आनी देना मो पई टिके बिस
6: बाबू ठू मोर राजा तु ए बाबूर भारीजा मथा के खाई बाबूटा भल कि ना सरम ते किछि नाइ कहि पारे गोबरा ए गोबरा
4: ओइ
6: कह त सांतानी मा ए मोर तेबे की हबे ए मोर साथे केने रहि छे
7: तेबे तो बाप से दिन राती रे बाबू को मारिबे को आसीथिले काहे कि
6: मई जाने के मोर अपनर आर के मीत सत ले फायदा उठाए कह गोबरा कह राजा कार बेटा
4: राजा मोर बेटा चोपी मोर बेटा
6: सुन ल आर लोग डाकियान मई सब कहमी
7: मु सब सुनी न चंपी तमे सुनिल तो खुड़ी
8: हाँ ये सत कथाटा आज जना पड़िल
3: मोरी खाइल जीवन तो सारा मत कंदेल कह कपाल तो मोर पोड़ा
8: शुणुबा
3: कौन शुणी तमे केमिका लोक ए गाँव रे समस्ते जानती ढेर हेला जाओ तमे चली जाओ
6: मुई जाऊचे गो सांतानी मा
3: रह चंपी तो बाबू को देखा न करी चली जीवु
6: आर देखा नहीं करे मुई देखा कले तोर माथा फेर खराब हबो नहीं नहीं तोर बाबूर दुआ मोठी अच्छे तुई ताके बांधी रख से तोर ताके ले घर कर
3: ए गोबरा देख तो मो राजा केंटी के गला

0: ଶୁଣୁଥିଲି ରତିକାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଗୀତଟି।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों

तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं

0: ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल करी देला। ए पर्यंत होटल रूम उपरे जीएसटी रो चारोटी दर लागुची। 1000 टंकारु कम दर युक्त होटल रूम उपरे 0% जीएसटी अछि। जेतेबेले कि 1000 टंकारु 2499 टंका मध्यरे थिबा होटल रूम उपरे 12% जीएसटी लागुथिला एवं 2500 रु 7499 टंकार होटल रूम उपरे 18% टैक्स लागुची। आउ एहाठारु अधिक दामरो होटल रूम उपरे 28% जीएसटी लागुथिला, किंतु एबेठारु होटल रूम उपरे केवल 2टी दर लागू हेबो। 7500 रु कम दामरो रूम हेले 5%, आउ अधिक दाम थिले 12% जीएसटी देबाकु पडिबो। जीएसटी सहित जड़ित नुआ खबर गुड़िक साधारण लोक एवं पूंजी निवेशकों को आश्वासना देउछि। सबुठारु बड़ रिहाती खाद्यपेय सामग्री उपरे दिया जाइछि। ब्रेड, रुटी, छेना, पनीर उपरे एबे कौनसी जीएसटी लागू हेबो नाही। एहा छोड़ा 33 जरूरी औषधर दर कम कर दिया जाइछि, जहाँ फलरे चिकित्सार खर्च कमी जिवो। लाइफ इन्सुरेंस उपरे मध्य संपूर्ण भाबरे जीएसटी रिहाती करि दिया जाइछि, जहाँ द्वारा पॉलिसी किनिबा एबे सस्ता होइ जिवो। छोटो कार एवं 350 cc रो बाइक रु जीएसटी उठा जाइ 18% करि दिया जाइछि, जहाँ फलरे एबे बाइक किनिबार स्वप्न साकार हेबो।
2: जदि आपण एबे कोनोसी नूतन कार किंबा बाइक किणिबा योजना करूछंती, एहा आपणको एबे बहुत सुलभ मूल्यरे उपलब्ध हेबो। जीएसटी परिषद छोटो कार 350 cc रो बाइक एवं तीनि चकिया जान उपरे टैक्स 28% ह्रास करी 18% करि दैछंती। सेप्टेम्बर 22 तारीख 2025 ठारू लागू हेबाकु थिबा एही पूजा उपहार एंट्री लेवल गाड़ीगुड़ी को आहुरी सस्ता करदेव, किंतु लग्जरी कार एवं बड़ बाइक 40% नुआ स्लाब्रे आसीजिबो, तथापि एसबु उपरे कम टैक्स लागिबो।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छ

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat.

0: चेटिनाड सीमेंट उपरे
1: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: कस्टमर केयर तरफ फोन आसीथिला कहुथिले तमरा 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हेइ जिवो। ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु।
3: ठीक लागुनी, स्कैम भी हेइ पारे।

शुष्क भूमि रे वर्षार पहिली स्पर्श माटी को प्रजनन क्षम कराए सेथिपाई धरणी रानी को एक रजस्वला स्त्री सह तुलना करा जायछि। गोटिए पटे धरित्री रो प्रस्तुति शस्य श्यामला हेबार अनेक आशा, अन्य पटे नारी जीवनर सफलतम प्रयास आगामी को सुंदर संसार टिए गढ़ी तोलिबा पई सेई आवेगर एक शाश्वत सुर संगीत रजपर्व नारी मानंकर पिठापणार आयोजन रज आसीब पुष्पित मनर ईप्सित वासना सबु परिपूर्ण हेबो। रज नारी मानंकर विश्रामर दिन अवकाशर दिन तेणु रज उत्सव पूर्वरु सेमाने प्रस्तुत करिथांति गुंड मसला मुढ़ी उखुड़ा पिठापणा इत्यादि सेई प्रस्तुति रे तांकर आनंद आउ मनर विलासी वासना गुड़ी को अजाड़ी दियंती तांकर बौल आउ मकर आगे।

0: ନାରୀ ମହଲ ଶେଷ ହେଲା।
1: अच्छा दासबाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम

0: उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल

0: मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
1: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनि परिबे टिकिए परे।
3: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
4: गारु सहर जाय सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
4: ଜୁଆଙ୍ଗ।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
2: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है, उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज आने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं।

0: लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शोक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रोफेसर शोक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं, हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर, एजुकेशन का सफर किस तरह से चला। यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक ही बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन, हमारे लिसनर्स को उन तक पहुंचाना चाहिए।
1: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खत मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था घर से बाहर, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहां नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सीमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से, अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट शुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
0: जी,
1: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे। और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एमफिल और पीएचडी में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से एमफिल भी किया, पीएचडी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया, और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
0: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, इट वॉज योर इनिशियल रिएक्शन, क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजत मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा, लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा।
0: प्रोफेसर शोक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड, तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
1: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंच कर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इन इटसेल्फ इज एन इंस्टिंक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। क्रिएटिविटी बचपन से ही पैदा होती है, प्लेफुलनेस, जो प्लेफुलनेस बचपन की है, बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना वगैरह, और फिर से नया

0: within his own language, within his own socio-economic structure. Lekin iske liye deliberate koshish nahi karni chahiye ki main zaruri aaj ke masalan hi-fi science ke bare mein likhun, AI ke bare mein likhun ya aaj ke intishar ke bare mein. Agar deliberately hum koshish karenge, wo achha adab kabhi nahi ban pata. Haan, zarur ye hai ki maine jaisa kaha ki कोई भी शायर हो अदीब हो वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता. ही हैज टू रीड अ लॉट, क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत. ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा.
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम से कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर्स की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम से कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम से कम कृष्णचंद्र को पढ़ना पड़ेगा. वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है.
1: Professor Shok Sahab, the amount of time, I can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, how the people around you, your family and your friend who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children.
1: So, dear listeners, with this, the special program with Padma Shri, Professor Shafi Shauk concludes here. Khuda Hafiz.
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी. आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत. इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर.
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी.

देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है

राजा उत्सव मिथुन संक्रांति को नहीं अनुष्ठित हेतिबारु एहाकु पर्व कहिबार शास्त्रीय समर्थन रहिछि। आद्रा पूर्व मृगशिरा नक्षत्र रे सूर्य रहिबार प्रथम तीन दिन को पृथ्वीर रज बोली कहा जाए। एही पर्वर परंपरा अति प्राचीन। एही पर्व माध्यम रे माता धरित्री ओ इंद्रदेवंक मिलन को स्वागत करा जाए। उच्च नीच धनी गरीब निर्विशेषरे समस्ते हर्षोल्लासरे चारिदिन धरी एही रज पर्व पालन करिथांती।

0: वृष मासर शेष मासांत मिथुन मासर आरंभ संक्रांति और तार परदिन एहिपरि प्रतिवर्ष जून मासर 14 रु 17 एहि चारि दिन धरि रज पर्व पालन करा जाय थाए। संक्रांतिर पूर्व दिन पहिली रज, परदिन भूमि दहन और चतुर्थ दिन बसुमतीको शुद्ध स्नान करा जाय।
1: झुमुरी, हेलो ए झुमुरी, हेलो चंपा किलो, आ आ मु घर भीतर अछि, आ ए रम ए राम झुमुरी टी
2: काई चिन्ही पारनु किलो,
1: हेलो सत्त कहुछि परा जम्मारु चिन्ही पारनि, हे देखि देखि तो हाथ रे कोन से ए देख म एड़ा केमिति सब चकचकिया चूड़ी कुंभ पका साड़ी सुना तारक से झुमका अरे औरत संग को पाऊजी आ केते सुंदर दिसचु माजी
2: आलो जामो सिमिति कोन कहउचु बा मल्ला आज पर दिन सज हे तो कौ दिन सज हे कहिलु मु सुना ना कि भाउज ना मते आज एमति सजै दे छथि बुझले किलो चंपा तू आगो सज हेबु चल घर भीतर को चल जा
1: आलो रह म ए रह टिके रह त मते मते टणा उठला करुन त
2: मल्ला तू सज हे न मते जम्मार फल लागुनि लो
1: आलो मु सज ना होले कोन ल तू त जेते सुंदर सजै त के चिन्ही पार नांती
2: मल्ला आज पर रज तू सज हबो मु भी सज हेबी
1: आलो ए झुमुरी
2: कोन बा
1: जानिछु ना मोर मौसी झील आसी तो
2: सत किलो
1: हाँ
2: आईलुनि
1: असल कथा कौन कि आम घर सब एत प्रकार पिठा देखला गाँ दाणी आंब
2: गए
1: आंब गोली भी देखला आ मत आसी पचारु कौन
2: सी जानी किलो
1: आलो जान ला के मते पचारुची एटा कौन बर्षर केउति सब हुए यार विश्वसत कौन आहुरी केते कौन
2: हईल हे चंपा ताको सब कथा बुझे कहलु टी शुणु आम ओडिया घर झील कि से सब कथा किसी जानी ना जानी अजना भले
1: हो नाई बा से तो रहिला विदेश रे ये सब विषय रे जानिबो केमति कहिलो
2: आलो सत किलो
1: आउ सेठी ओडिसा रे संस्कृति को बहुत लोक आदर करंती जते के प्रशंसा भी करंती सेति की सेठी रज पर्व ऊपर किछटा आभास पाइथिला मु ताको बाकी सब कथा बुझी दे छी म
2: आलो हे चंपा कौन बुझी छी मते कहिलु
1: मु ताको कहली
0: आद्य आषाढ़ प्रथम बारिपातरे माटी हुए रजस्वला धूसर धरित्री विषर्ण प्रकृति और स्वेदाक्त मणिष मैंने वर्षार पहली स्पर्श से आह्लादित हुए वर्षा एक सृजनर ऋतु एवं रज ही सृजनर प्रथम झंकार नारी मैंने रजस्वला नहले जेपरी संतान उत्पादन शक्ति हर बसपरी पृथ्वी रजस्वला नहले उत्पादनक्षम हब किपरी कृषि प्रधान सभ्यतार माटी को आम माँ बोली पूजा करू तेणु पृथ्वी रजस्वला होतीबारु माटी माँ को रज तीन दिन जाए विश्राम दिया जाए कर्षण खनन उषा बेउसा कटा बटा रंधा बढ़ा इत्यादि कार्य बंद रही था
3: रज तो आम बहुत बड़ पर्व रज आग दिन को सजबाज कहती से दिन ठूम घरे पिठापणा तैयारी हम पोड़ पिठा आरिसा काकेरा खजा बहु प्रकार पिठा तैयारी हम सजबाज दिन भी आम आम गाधुआ पदुआ सारीदेबू कहीं रज तीन दिन गाधुआ पदुआ हबनी पहली रजरे आम अलता हरिका लगेबू चंदन टीपा हरिका लगेबू सब सांग पिठापणा धरी साई साई बुलू फिल्म जीवु दोली खेलू रज पान खाइबू एमती बहुत मौज मजलिस करूँ।

0: अजणा लिंक क्लिक करंतु नाही. सायबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 माने राखंतु. SBI सचेतन रहंतु, सुरक्षित रहंतु.
1: अच्छा दास बाबू, आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सैथि पाई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली, एवं आजि मध्य चेटिनाद सिमेंट.

0: उपरे
1: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही था चेटिनर सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनर सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲବମ୍ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ତାନସେନ ସିଂ, ଆଉ ଆପଣ ହେଲେ କୈଳାସ ବେହେରା ଏବଂ କାମିନୀ ବେହେରା କନ୍ତୋଳ ଆଠଗଡ଼ରୁ।
3: ମଫସଲ

0: ये तो आम पारंपरिक रज गीतर धाड़ी
1: तेरे प्रतीक्षा तमे भी कौन कम कि देखी देखी तम पापुलेटा ए माँ तम हाथ में मंजुआती कि सुंदर लाल ही पाचीची कि लगे देला
0: मीनू खुड़ी तांकर बाहागर परे एटा प्रथम रज नुआ भुआ शुणी तो काली सजबाजरे गाँ गोटाक जाक झीओ आम खंजारे भर्ती खाली तो हस
1: हाँ परा आम घर भी सही अवस्था को साड़ी रे को झुमका हाथ रे मेहंदी आउ नखरे रंग एमती एमती रे तो राति दे घड़ी आउ तथापि कोन आखि को निद होइला कि
0: हाँ प्रीति मु भी बड़ी भोरु आज उठिली काली ठू बट्टा हलदी रखा होइथिला आज नुआ ड्रेस पिंधि डोली झुलिबी बोली काली ठू मो मन उच्छन
1: मु भी आज नुआ साड़ी पिंधिची देखिला
0: अरे एटा माणिया बंध साड़ी ना
1: हाँ अप्पा आनीथिला मो पई पातरे अलता आखिरी कचल आ मथरे कुंकुम सब गोटी गोटी करी लगे देले भाउज घर तो खाली दुलुकुचि केत बेले काचा झुमझु कोठी पाउंजी रोणझु पुणी कोठी झुमके छम छम
0: एतर

0: ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 7ଟାରେ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटी और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

0: प्रौद्योगिकी भारतस्य यूनाम आकांक्षाः देशस्य परिवर्तनस्य भविष्य निर्माणस्य च चालक भूताः सन्ति इति उक्तवान।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: सभाम अभी संबोधयन फ्रांस देशस्य राष्ट्रपति मैक्रों वर्यः अवदत् वैश्विक नवोन्मेषण शक्ति रूपेण भारतस्य उदयस्य प्रशंसां सहकृतवान्। सः अवदत् यद् अद्य

0: जुहार सांते
1: कौन है
0: हजूर दारोगा साहब मु गोविंदपुर मौजार चौकीदार गोबरा जना
1: देखो नालायक
0: हजूर
1: तू भारी बदमाश आदमी अछू
0: हजूर
1: तो जमींदार रामचंद्र मंगराज भी भारी बदमाश आदमी अछू
0: हजूर
1: तुम्हें दिए सलाह करी रतनपुर मौजार डोमो मान कनारे मिछ मकदमा कल
0: हजूर
1: से माने जेल गले
0: हजूर
1: बेकूफ नालायक
0: हजूर दारोगा साहब खूनी मामला
1: क्या कहा खूनी मामला
0: हजूर दारोगा साहब ए गोविंदपुर मौजार भगीचंद्र भारजा सारिया तंतियाणी को खून
1: आसामी किए
0: खोद जमींदार रामचंद्र मंगराज
1: रामचंद्र मंगराज खून कर ची
0: हजूर
1: चलो तड़े दम मुसार जमीन तदन कुछ भी
0: हजूर
1: सही चौका घोड़ा मार करू

0: तमर जवाब कौन कुआ
1: मोर जवाब
0: हाँ कुआ जवान मंदी दिया
1: बेस लेखन तो मु सारिया को मारी नहीं भोगिया मो पाखरु टंका करज नहीं थिला नालिस करी ता 6 मान 8 गुंठ जमी मो डिग्री करनी छे मकदमा खर्चो को ता गाई नहीं छे
0: ठीक है बुझिलो रामचंद्र मंगराज मु दारोगा इनायत हुसैन मो काम रे पाक से पाक मोटे नहीं ए मकदमा रे मु तुमको चालान कली मुंशी चिठा रिपोर्टटा दियो तो मु थर पढ़ी नहीं है बंदा गोबरा जनर रिपोर्ट पाइबा मात्रे लहम को गुदस्त न करी एक ही मामला भारी संगीन थिबा लिहा बंदा तड़ेदम सरजमीन को रमाना है दस्तर मुताबिक आसामी घर खानतलाश करी बहुत हुशियार रे आसामी को गिरफ्तार कला बाद सारियार लाश एवं नेतो नामक एक काला गाई बरामद हेबा हालत आसामी रामचंद्र मंगराज निजे खून कर थिबा साफ हिसाब एई सब हाल हेजाज रे आसामी ऊपर खूनी साबित हबारु हजूर को चालान देली हजूर खुदाबंद माँ बाप दुनियार बादशाह रिपोर्ट कसुर माफ हो नौसनारा तजबीज हब 10 तारीख अक्टूबर सन 1831 मसीहा ठीक अच्छी बरकंदाज आसामी को हाथ कड़ी पके चालान कर अरे ये की मुसीबत ए तिरला एमती कांदू छी काई
2: नहीं नहीं मु साथ को मु छाड़ी देबी नहीं
1: चंपा जा घर को फेरी जा कांद नहीं
2: मो गोड़ा हाथ चलू नहीं सारते मो आस को के मत फेरी
1: ए काहे की एमते कांदो छु जे ए गोविंदा अरे चंपा को नहीं घर को जा
3: आसो चंपा सांतानी आसो
2: मो कौन करे मैं मते बुद्धि बात तो सुनाई गोंपा घर कोलप पड़ी छी जिनी सगुरा का हुई धरी दिबे की मुसा खाई दिबे
1: ए सुन सुन चंपा ए ने ए दीटा गंता घर कंची सब जिनस पत्र सावधान रे रखिबो किछि चिंता करबो ने
2: ए यो देखरा को कोन म भाग गे रछि
1: ओहो हो तू एथर घर गोल जा फिर जा
3: चंपा सांतानी असो आउ चालो कहीं असो
2: हां असो हां चल देख गोविंदा साथ मते गंता घर कंची देई छु कहार को एक कथा कहबो नहीं ती चल
4: दंडवत मंगराजी
1: किए
4: चिन्ही पारु ना उकिल राम राम लाला मामलाटा आपण को इते दूर बढ़ी गला आपण आगुरु टिके खबर देले नी आज खबर पाई मु कहली जाए हाजत रे मंगराज संगे टिके देखा करी आसे
1: वकील साहेब मु कोन करबि मते बंचांत आपण मो धर्म बाप मु पिला लोक पिला बुद्धि आपण को सब लागिला
4: आपण को किछि करबा को हबनी मु सब जाने मु सब कहि तबे गोटे कथा जानती मामलाटा भारी का खून मामला बेल न जगिले
1: फासी
4: पुणी से पुरा मुआ दारोगा पिछा धरी चली तेरे आपण किसी परवाह कर मकदमा टा मुड़ेदेवी आपण खाली हाथ पिटा खर्च कर 10,000 टंका
1: 10,000 टंका
4: अच्छा आपण गोटे काम करंतु आपण जमीदारी टा मकदमा खर्च बाबद को मो ना कंटक बला लिखी दियंतु
1: कंटक बला
4: हां आपण तो मोर धर्मर पुओ मामला खत्म हेला परे मु कड़ा दाम हिसाब सब बुझे देबी आपन टंका सुजी जमीदारी वापस करनेबे कोन भाबु चंदी
1: हो आपन कर जा खुशी
4: मु तबे जाए सिखम कागज पत्र सब किनिया

क्यों रामचंद्र मंगराज, अब क्या मतलब है? रतनपुर डोमो मान को मकदमारे तो आम थाना वाले को फाकी दल, अब सारिया तंतियाणी खून मकदमारे मु तुमको गिरफ्तार कली। तुम्हें सारिया को ठेंगारे पीटी पीटी मारी दे, तुम विरुद्ध रे बहुत साखी बहुत गुआ, निजे चौकीदार गोबराजे ना जवाब दे, तुम्हें सारिया को ठेंगारे पीटी खून कर।

0: चलीगला
1: ए दोकानी रहबा को जागा मिलबो
0: जागा जुहार आज्ञा जुहार आसंतु आसंतु ऊपर को उठि आसंतु मो शांत शांतानी के पुनी जागा मिलबो नी
1: रोसे सरजम
0: सब मिलबो आज्ञा
1: ए ने पैसा रोसे सरजम दे
0: छुकी आज सकाळ काम चाहिए एका बेले के चारणार सौदा मो दोकान खोला दिन ठे बेपार मुझे
1: रोसे
0: चूली आज्ञा आप चलत मो चूल लगे दूची आपण कहीं कष्ट करेंगे आगे रोसे सरदाम बुझी नियंतु चाउल बिरी डाली लुण चूली जल्ला हाँ चढ़ात आज्ञा
1: अरे बुढ़ा पु एटे दूध कि घी मिल घी दूध ना खाए
0: सत कथ आजा सत कथ न मिल सीना नसब जिन कौन आपण को योग्य आज्ञा गाँ तो एठ मोटे पाए बाट पैसा कई दिंतु मु गाँ टा बुले देखी आसे गोटाए शु कि साक्षात लक्ष्मी ठाकुराणी केमी की गड़ी पड़ी
1: बुढ़ा पु खरमरा गुआ घी देखी आड़
0: हाँ आज्ञा ए मु बाहर
1: देख लुटे गोविंदा शुणी लुटे मुझे जाने सांतानी थी मो सांगरे आसे तू भी शांत हो गलु मो सांगरे कटक चल देखिबु तते कौन करी रखिबु
2: नाई चंपा सांतानी मु कटक जीवनी चलो हम गांव को जीवा बिलवाड़ी किनी चासो असकी रहिबा
1: केड़ा निछुना टाइबा तू पुटुले रे बांधी जहां सांगरे आनी छी तीन पुरुष के पांच पुरुष बसे खाइले तो सरीबो नै जमी बाड़ी कौन होगा
2: गांव को जदी न जीवो तबे मो भागटा मते दे दियो
1: भाग की भाग रे भाई भाग सुना टंका कोला टंका सुना गणा सांतम संगरे मिसे मु सब पति थेली मो संपत्ति मु आनीले तते के भाग देबी रे
2: सांतम तो कंची आनी बुद्धि के काढिला मु तमको से बुद्धि देला रुसिना
1: ओहो रे मो बुद्धि एई के एतना बुद्धि नाही गोडे कचाडू केते भारी बुद्धि टा एका काढिला मते आउ से बुद्धि आसंता नाही परा किरे कुआडे गलु किरे से बाहर पुनाटा रे जाई काहि के बसिलुनी सुन भल गति अच्छी ता मो संगे कटक चल नहले बाबना भूत है बुलू कहला कन्ना बुद्धि बुद्धि रे बुद्धि ना पड़ई पड़ी जाऊची कुद्धि
2: से दोकानी बुढ़ार पुआणी ए घी दूध दे गला
1: रख सेठी किरे किरे तू पुणी कौन जाए पिंडार बसिलुनी मु थरे कहिचे मो कथा मान नहले टंका सुना कौन काणी कौड़िया धोई पानी तो पाइबी भला देबी आ भोक हलानी खाइबा किरा सूचना नाही बा मोला मो येड़े रुसा कहि की खाइले खा न खाइले नहीं कोइला को सात पहिला मुंडार चढ़ंती तू कौन करबी तो पाई एठी हई भात डाली बाड़ी दे मु खाइपे सोऊ

0: नौरी भाई, ए नौरी भाई, नौरी भाई
1: किए
0: ठीके घाट पारी करी दिलु
1: ए मेघ अंधा राती डंगा फिटिबो नै जा
0: तो हाथ थोड़ी भाई राती पर पहात हे आइलानी तू तू
1: ओहो खे टंका देले मु कुरिया भीतर बाहरी नै ए जा
0: ए ने भाई 5 टका पछि दोची ठीके पारी करी दे
1: 5 टका गोटाए पछिरे को 5 टका ओ दियो दियो भाई कौन दोच दियो खाली तमे बोली नला आउ केइतरे ना मोटे उठिना तांदी ओ डंगा ऊपर बसो जा बसो

あれあれあれあれあれ、सरकार श्रीयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर मुदेई बनाम रामचंद्र मंगराज साकिन गोविंदपुर प्रगने असुरेश्वर जिले कटक मुदाला सारिया को हत्या करिथिबा ओ ता घरर आसबाबपत्र लूट करिथिबा मामला रायर यथाजथ अंश आंभे सेशन जज एचआर जैक्सन अदालत रे पढ़ी सुनाई देउछु। आंभे साक्षी मान द्वारा यथेष्ट प्रमाण पाइछु जे सारिया हत्या मकदमाटी संपूर्ण रूपे गठित ओ मिथ्या अटे। प्रथम रिपोर्टकारी चौकीदार गोबरा जेना यार सूत्रपात करी से मिथ्या को सत्य रूपे प्रतिपन्न कराइबा निमन्ते जथेष्ट चेष्टा करी अदालतर कूटप्रश्न रे आत्मरक्षा करने को असमर्थ होई अछि। अन्य साक्षी मानक ठारु एही प्रमाण मिलिछि जे आसामी अन्य लोकर संपत्ति हरण करने सकाशे कुटिल बुद्धि प्रयोग विद्यारे निपुण अटे। ऑर्डर मात्र कहार प्रति दोषयुक्त बल प्रयोग करिवार प्रमाण नाही। सुतरां एपर लोक द्वारा नरहत्या संपूर्ण असंभव अटे एवं हत्या करिवार कौनसी कारण मध्य नाही। सिविल सर्जन को साक्ष्य एवं अन्य प्रमाण द्वारा आमर हृदबोध हेउछि जे सारिया को केही हत्या करी नाही। दीर्घ दिन अनाहार जोगु ताहार मृत्यु घटिछि। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर सूत्रा हुकुम हला कि आसामी रामचंद्र मंगराज को नरहत्या मकदमारू मुक्ति दिया जाए नेतो नामक गाय को आत्मसात करने अपराध में कठिन परिश्रम सहित छह मास कारादंड एवं 500 टंका जरिमाना करा जाउ। जरिमाना अनादय अतिरिक्त 3 मास कारादंड। पुनश्च एही मकदमारे मिथ्या साक्ष्य देवा अपराधरे गोबरा जेना चौकीदार विरुद्ध रे पुलिस उपयुक्त कार्यपन्था ग्रहण करंतु। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी

0: आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा। कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य

0: सामर्थ्य। गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के इतिहास

0: ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is

नुकसान पर, और अगर उस दृष्टि से दोनों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान की टीम इस समय बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। अगली गेंद और इस बार स्वेप कर दिया फिर से खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर, चार रनों के लिए।

0: देखो सदानंद भाई खूब जाग्रत थिबो कथाटा जमी फुटियारा न हुए टिके हेले जना पड़गले सब बंजूर हो जाबटी गोड़े गड़मठ करना कलेज फिटवा पंदर दिन आगुरी चली आसब ओह शेष कथा जमी मो कान बाजि दिह मुंडे सरसर हो सत्य अबा लंब जोटे चलीगला पा
1: राति अदेला बाबू मैंने फेरी ना का सका चंदनपुर उवास को दी बाबू रमाना हे
2: बाबू आसिल।

0: पेशकर बाबू, गहमन से थर्ड रिमाइंडर आया, कटक ट्रेजरी से कैलकाटा रुपया भेजना है, किस वास्ते रुपया नहीं गया?
1: खजांची कहुतला हजूर, थोड़ी नहीं, नाजर बाबू थोड़ी दे नहंती।
0: बुलाओ रास्कल नाजर को।
1: नाजर बाबू कचेरी आसी नहंती हजूर।
0: किस वास्ते नाजर नहीं आया?
1: से टिके डेरी रे आसंती हजूर, बेलो ही नहीं।
0: व्हाट, डॉसन साहब छुट्टी में है, इस वास्ते नाजर डेरी में दफ्तर आता है? चपरा से जाओ, रास्कल नाजर को काम से खींच कर लाओ।
1: यही हजूर, नाजर बाबू आसी लड़ी।
2: हजूर
0: क्या है?
2: मो घर का रात्रि सरकारी तहबिल सब चोरी रही थी हजूर।
0: क्या, सरकारी तहबिल चोसरफ हुआ? कैसे कैसे हुआ बोलो, कम ऑन स्पीक आउट। चपरा से पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब को सलाम दो और थाना इंस्पेक्टर बाबू को बुलाओ। नाजर, हम तुमको नौकरी से सस्पेंड किया।
3: मु अपन का अरेस्ट कर नटो बाबू, कांस्टेबल हथकड़ लगा।
4: इंस्पेक्टर हो मु तांकर जामिन हेबी।
3: आई एम सॉरी पेशकर बाबू, मु जामिन दे परबिनि। कांस्टेबल आसामि के हाजत कुनिया।
5: मु बर्तमान कोठी ओ हाजत रे महाप्रतापी नाजर नटवर दास हाथरे हाथकड़ी पिंधि कटक रास्तारे मु जतेबेळे हाजतकु आसिली लोके मते देखि कोन कहथिबे, हसिथिबे ना दुख करथिबे, घृणारे मुह बुलै नैथिबे ना लाजरे मुह तळकु करथिबे, कि किए यार उत्तर दबो, किए दुनियारे किए मोर मित्र अछि, किए किए यार उत्तर दबो, किए किए उत्तर दबो यार, किए किए।
6: ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏ ପାଉଁଶ ଗଦା ଭିତରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାର କୁଡିଆ ବାହାରିଲା।
3: ତାହେଲେ କୋ ଚିତ୍ରକଳା, ଏ ଚୋରି ବିଷୟରେ ତମେ ଯେବେ କିଛି ଜାଣିନା, ଏ ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ତୁମ ପାଉଁଶ ଗଦା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କେମିତି?
7: ମୁଁ ଏ କଥା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଏ ମୋର କୋଉ ଦୁଶ୍ମନ କାମ ହେଇଥିବ।
3: ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଥାନାକୁ ଚାଲ।
7: ମୁଁ ତ କିଛି ଦୋଷ କରିନି, ଥାନାକୁ ଯିବି କାହିଁକି?
3: ସେ କଥା କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ହବ, ତମେ ଆଗ ଚାଲ।
7: ଚାଲୁନ, ଦୋଷ କରିଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ନହେଲେ କିଏ ମୋର କଣ କରିପକେଇବ ଦେଖିବିନି, ଚାଲ।
3: ଆଉ ସେ ବଦମାସ ଦିଷ୍ଟା ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଦୟାଲ ଆଉ ରାଘବ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ।
5: ମୁଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ତୋସରଫ କରିନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଧବା ଚାନ୍ଦମଣିର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା, ଗରିବ ପିଆଦା ଖୋଦା ବକ୍ସର ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା, ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛି। ପ୍ରତାପୀ ନାଜର ନଟବର ଦାସ ବୋଲି ଏହା ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ କିଏ ଖୋଦା ବକ୍ସର ହାକିମ ନଟବର ଦାସ, ନା ନରିପୁର ମହାବର ମାର୍ଫତର ନଟବର ଦାସ, ନା ନାବାଳକ ଭଣଜା ନରି ଆଉ ଶ୍ରୀହରିର ମାମୁ ନଟବର ଦାସ, କିଏ ମୁଁ?
6: ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା।

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान

0: एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: नमस्कार, आजर अंतिम मुख्य संवाद सह मु सत्यरंजन महापात्र। प्रधानमंत्री एवं फ्रांस राष्ट्रपति मध्ये विश्वस्तरीय रणनैतिक सहभागिता नै प्रतिनिधिस्तरीय आलोचना। गिनीस विश्व रेकर्डे स्थानित हला आयुष मंत्रालय पक्षर् आयोजित विश्वस्तरीय अनलाइन योग कार्यक्रम। ओमान उपकूल ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ବିରାଟ 1ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 98.95%ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ଆଇସିସି ମହିଳା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 64 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ କୁରାସୋ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି, ଉଭୟ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା

कलह पचाति भूतानि, कलह संघरति प्रजा, कलह सुप्ति सुजागर्ति, कलहि दुरति क्रमः। आम देशर महान पंडित अर्थशास्त्रर प्रणेता आचार्य कौटिल्य बा चाणक्यंक द्वारा रचित एही संस्कृत श्लोकर सार मर्म हेउछि, एही संसाररे सबुठारु बलवान हेउछि काल बा समय। ए जगत कालर अधीन, कालर प्रवाहरे समस्त क्षयशील। प्राणीमाने निद्रा गले मध्ये काल सेमानकठारे अविरत विद्यमान। काल बा समयकु अटकाइबार शक्ति काहार नाही, कि समय काहा पई केबे अटकी जाए ना, से सदा चलमान।

0: आगो को रज कुमारी माने दोली खेली खेली रज गीत गई आनंद उल्लास रे दिन काटिबे तेबे हेमलता दले तांकर पिला दिनार रज गीत एथि सुनाई देउछंती आसंतु आपण सुनिबे मु मध्य सुनुछि
1: रज पर्व सबुठ हमर बेस्ट आमे रातिरु उठि गाधा पाधा करि से अलता फलता नाई रज हब बिली पिठा घरे घरे पिठा हेतब आ दोली भी घरे घरे नागिथब एमती सब आ बनस्ते डाकिला गज।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोता बंधु, कला संस्कृति विकास योजनारे आम देशरे विभिन्न समय रे विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव होउछि, प्रदर्शनी आयोजन करा जाउछि, जातीय संस्कृति महोत्सव, युवोत्सव एवं विभिन्न राज्यस्तरीय कार्यक्रम माध्यमरे देशर विभिन्न अंचलर कला एक मंचरे आसुछि। एहाद्वारा विविधतारे एकतार भारतीय आदर्श अधिक सुदृढ़ होउछि। आजर डिजिटाल युगरे एही योजना पारंपरिक कला को नूतन प्लाटफर्म दउछि। विभिन्न कलार डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन प्रदर्शनी एवं वर्चुअल कार्यक्रम माध्यम रे भारतीय संस्कृति विश्वर कोण अनुकोण रे पहुंचछि, फलरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर रे भारतर सांस्कृतिक प्रभाव आहुरी बढ़ुछि।

0: तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती।
1: देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ।
0: तुम्हारे बगैर,
1: मेरे बगैर

0: डकायत माने रात्रि लुचि लुचि चोरी करती डकायती करती खून करती लेकिन आपन को भली जो धोप धावलिया पाठुआ लोक माने दिन दी पर आम भलिया गरीबों को तट्टी छिपी सब लूट कर नियती से माने से माने कोन से माने
1: भदर लोक बिसिया
2: आगे
1: ने हम चाबुक ए भली रास्ता रे कुकुर उडा को मारी भानी मार देले भी मो मन से दुख आसीबो नै
0: अरे आजी मते मारी देले मारी दियंतु हजुर मारी दियंतु हले मते मो घर खंडी को मेहरबानी करी दियंतु ती दिन हला अमीना बेटी गछ मूल रे पड़ी छि चुली नहीं चाळ नहीं औषध नहीं कि पति नहीं बाबू मरी जीवो बाबू मरी जीवो आठ वर्षर पिलाटा मोर घोटे बोले अमान तुमको बचे दियंतु हजुर बचे दियंतु
1: चुपचाप बाहर जाए तू गेट आउट आई से गेट आउट
0: ठीक अच्छे हजुर ठीक अच्छे तुम कथा केवल हल्ला थाला बुझ जाई देखे गछ भले छुआटा को सुई दे आसती बचीचि कि नहीं बेटी ये बेटी अमीना आखि खोल बेटी तूने क्या किया अमीना बेटी को वो अमीना बेटी को मत फेरे दे अल्लाह वो बेटी को मत फेरे दे अमीना

0: अमीना बेटी अमीना, ये बुढ़ा बापा टोपर इतने नाराज काहे की माँ? खाइबू आ, रोटी खा, कबाब खा, मिठाई खा। ओ खाली आंसू आंसू तू गुस्सा ही गलो। खाइबू नी, खाइबू नी। ना ना, शे मो बेटी, शे कुआड़ी जी मो। तू मैं कितने चीज़ आनी चाहिए बेटी, तू आंसू हूँ नी। ये बेटी अभी ना, तोरी पाई, खाली तोरी पाई मुझाई के लिए से सहितान वकील पकु। शेरिटा गोटाए पाची, से मौजूद तो छोड़े नहीं ची, मुझे तटु तटु को छोड़े नहीं, हलवा छोड़े नहीं, हलवा छोड़े नहीं। नहीं तो, से सहितान वकील मेला देखा तांगे से छोट झीटा भी आटा बढ़िया सुजोग वकील दिनेश दास तू मोर जान ले चो। मुझे तोर जान ले जीवी जान ले जीवी तोर
1: धरणी धरणी
2: आज्ञा
1: मेला देखा जी था चलो जीवा सुन मु सब मैटर्स रेडी कर रखी तमें जाए खाली इनकम टैक्स ऑफिसर संगे देखा कर सब निष्पत्ति सांगे 5000 टंका नहीं जाओ आज दरकार पड़े मत फोन कह
2: हाई ताले चलो जीवा

0: वाह, ये छेड़ा तो चमत्कार नाचुची। ये तो लोके खुशी ही ताऊपुर को पैसा भी कुछ नहीं। पैसा लोभ देखे याको तो सहजरे फसी आबो। चमत्कार आनिया थोड़ी चेष्टा कर देखे। ए जियो केड़ा छिलु
1: मते डकछ?
0: हां मु कथा टी सुनिबु।
1: कह
0: भारी मूल्यवान कथा। तू मो कथा राजी हेले पैसा रे पुती जीवु।
1: अच्छा
0: जीवु मो साथ रे
1: कोडी के
0: मो घर को असही सब कहबी। चल चल मो साथ रे।
1: हां चल।

ए अल्लाह, ए खुदा, बेटी अमीना तू को सरग रहा चुरे मां, वो तो बकू को दे जा बेटी, वो तो

0: आकाशवाणी कटक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपके परिवार में अनेक प्रकार के वस्त्र होंगे, अनेक प्रकार के फैब्रिक्स होंगे, अनेक कंपनियों के प्रोडक्ट होंगे, क्या उसमें एक खादी का नहीं हो सकता क्या? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि कम से कम एक चीज, भले हैंडकरचीफ हो, भले घर में नहाने का तौलिया हो, भले हो सकता है बेडशीट हो, तकिए का कवर हो, पर्दा हो, कुछ तो भी हो, अगर परिवार में हर प्रकार के फैब्रिक का शौक है, हर प्रकार के कपड़ों का शौक है, तो एक ये भी तो होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीदते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: अभलगीतर प्रथम गीत गाई इतिश्री दास मीनाक्षी देवी रचना।

0: ଅଦ୍ୱୈତ ସେଠୀ ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ଦଣ୍ଡନାଚ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था।

0: योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के।
1: श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रचारित हेउछि 308.6 मीटर तथा 972 किलोहर्ट्ज। आरंभ करिबा आपण मानकर प्रिय एवं मोर प्रिय कार्यक्रम मंजुळा मध्यान। अनेक गुडी एसएमएस से हम पाखरे पहुंची सारी, जेतेबेले अनेक गुडी एसएमएस मध्यरु गुटिए घंटा समय भितरे जेतेकिटी एसएमएस होछि मु देउछि, बाकी गुड़िक जिते रही जाऊँ आप मन दुख कर आदौ मन दुख करनी। चारिटा बेले रही चिरहरित कार्यक्रम से एसएमएस आपरिवे, तेज डेरी नक आरंभ कर आज एसएमएस कार्यक्रम मंजुळा मध्यान। अनेक गुड़ एसएमएस तो आसी, प्रथम कहबि आमर नियमित श्रोता नारायण प्रधान, लकी सोम एवं सोमनाथ साहू, जिग्रन पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ दुई जन लेखा लिखिंट एक दुजे के लिए कथचित्र गोटे गीत शुणापी। किंतु नारायण प्रधान सर को कह जो गीतटी आप अनुरोध कर गीतटी आम पाखे ना। सोमनाथ साहू एक दुजे के लिए जो गीत अनुरोध कर गीतटी आम पाखे अच्छी, तेज आपणई दौ एक दुजे के लिए गोटे गीत। गीतटी गई लता मंगेशकर एवं एसपी बालसुब्रमण्यम।

0: किडोठा ए आसी खाइबा को देलेबो गेफा दे
1: ए पसंद हैला नी ठीक अछि सुनो

एसएमएस करथिले प्रभाकर सीडीए सेक्टर 11 कटकरु निर्मला प्रत्युष शर्मिला धरित्री आपण माने समस्ते सुनिबाकु चाहुथिले धरित्री कथाचित्रर गोटे गीत सपनर पथे पथे जो टिके आगरु मु गीतटी सुनै सारिछि तबे परवर्ती एसएमएस आसिछि कांतल आठगड़ लिखिछंती समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला एवं मामाली आपण माने समस्ते रामायण कथाचित्रर गोटे गीत शुणा चाहते गीतटी गई एस जानकी।